0: Swami, you are the very essence of our lives. We are indeed so blessed to be a part of your divine mission. It's our prayer, Swami, in the form of this song, that please be with us in our life as our breath. Swami, please make all the youth of Himachal Pradesh your divine message.
1: Lord, dispel all the darkness, doubt and despair from our lives. Bhagwan, samast sansar aap hi se hai. Aap hi to har vastu ho. Aap hi to wo anmol khazana ho, jise har koi pana chahata hai. Hamari har saans, har dhadkan, tum hi ko pukarti hai. Hamari aankhein, har pal, हर क्षण तुम्ही को निहारती हैं, ओ हमारे प्यारे साईं, आ जाओ हमारे जीवन में, बस जाओ हमारे हृदय में.
0: स्वामी, प्लीज टेक अस इन योर डिवाइन फोल्ड एंड मेक आवर लाइव्स योर मैसेज.